इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
2: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
2: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: है।
1: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
2: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
2: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये पया।
3: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
0: बच्चों की खुशियों का दिन।
1: ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
3: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
4: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
2: मुबारक ईद मुबारक।
3: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
3: ईद मुबारक।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

वस रखना यार बले चले ना खोर भले असकना।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चिनार
1: की तरफ से आप सभी को ईद

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
2: नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेलैंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner. Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: नो से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: değil, aman oru baycari kadim.
1: İd, sabse idi, samayık ne kadim.
0: टीम रेडियो चिनार
2: की तरफ से आप सभी को
1: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगढ़ लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गोल To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara. Lazat Spa.

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
2: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
3: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे,
2: बोलेंगे जरूर बोलेंगे,
3: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
2: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
3: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
2: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन। ईद सबसे

0: ईदी समेटने का दिन।
1: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
2: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
2: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

বসুরত চুকত পরি তশোবি জাম ধরি বসুরত।

वसक ना यार बने चले ना खोर भरे असक ना।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM. RJ Zoo.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

करो अपने दिल की बात मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चिनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
3: मुबारक ईद मुबारक।
4: आ जय जू।

Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: अरे ये सब हटा रे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चिनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन। आरजे

0: God damn.
1: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
2: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
1: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
2: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
1: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
2: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
1: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
2: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चिनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

सूरत झुकत परी चशोभी जान धरी बसू

वसखना यार बने चले ना खोर भरे असखना।

0: अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
1: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
1: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
1: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
1: टीम रेडियो चुनार
0: की तरफ से आप सभी को
2: ईद मुबारक।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

0: God damn.
1: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
2: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
1: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
2: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
1: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
2: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
1: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
1: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको दौड़ कुछ नहीं कहते, मगर मगर

दिन, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात, एक बात, लेकिन एक बात

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूं, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहां तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
2: सा सा रे ग म प म ग म प म रे

0: सवरिया ओए होए तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: करते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हम

0: के चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

मैंने खींचा आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आ हा हा। हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: साथी
1: मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की और इस फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की मुश्किल।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: जाते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।